पाठ पुस्तक संध्यावादन सील पूजस सेल पूजस बगल समाधन मुख झूठ विभोख संसारं कृपाल ते हाल बेचारं गलमाला तलक ललाटं दोय दोती बसर गबाडं जे जानत ब्रह्म कर्मं सब फोकट निश्चो कर्म कौन।

0: आपे पांडे साजना पे पूर्ण दे एक नी दुष्मा एक चले रहन चढ़ी एक निहाली पै सामने कुपर रहन खड़े तिना स्वारे नानक जिन को नदर करे महला दूजा
1: आपे साजे करे आप जाई।

हर हर रचाया आप गवाया तुर पाया गुर के शब्द समाया जा तन शब्द सोहाई प्रेम कसाई।

0: ॐ सवदेह हदुरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद बाणी। गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन परतख गुरु निस्तारे। ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाव बिखम नदी जाय तरनी। ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सत्कारयोग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना दा पाठ पावन शब्द भाई साहब जी पासों सरवन कीता। पवित्र बाणी दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नू एकागर करदे होए निमाणे जे हो के समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा विच जुड़न दा यतन करिए। सतगुरु जी अज दे शब्द दे राही मनुखी दुनियावी जीवां नू जो समझाउणा चाहुंदे हन एक मन एक चित हो के

हे प्यारी कंत सवारी जदों सच्चे दे प्रेम दे विच भिजना कीता उदों कंत ने फिर मेरे जीवन नू सवार दिता। मेरा जीवन विगड़िया होया सी ना, जीवन की सी कुचजी चाजी नहीं सी जीवन जिउण दा, जीवन की सी दुहागण वाला, कदी किसे दे दर ते कदी किसे दे कदी किसे दे। क्योंकि फिर बेनती करा सुहागण दा इक्को ही दर हुंदा, दुहागणा दे कई दर हुंदे आ। जां सिद्धे लफ्ज़ां विच गुरमुख सुहागण है ते मनमुख दुहागण है। मनमुख दा कोई एक थां थोड़ी हुंदा, मनमुख दे कई थां हुंदे आ। गुरमुख दा इक्को ही थां हुंदा, इक्को ही दर, इक दी ओही ओट हुंदी है। कां है ना, कां कां ते थां थां ते चुंजा मूंह मारदा, पर कोयल इक्को ही रुख ते बैठ के वो अंब दा बूर ही उन्हें अपनी खुराक बनाई है। तुसी देखो बगला तुहानू हर थां ते मिल जाएगा, पर हंस केवल मान सरोवर ते मिलेगा। क्योंकि हंस की है गुरमुख, कोयल की है सुहागण गुरमुख। सतगुरु महाराज कहिंदे कंत सवारी जदों सच्चे शब्द दा अभ्यास कीता उहदे नाल प्रेम बन गया, उस प्यारे ने फिर मैनू सवार दिता, अंदरों सोहना बना दिता, सुचज्जी बना दिता, मैनू जीवन जिउण दा ढंग समझा दिता। सच्चै भाए प्यारी, उस सच्चे नू मैं भा गई, प्यारी लगन लग पई। कंत सवारी जदों मेरे उस कंत ने मैनू सवार दिता, हर हर सियों ने हां रचाया। हुण मेरा जड़ा नेह है वह केवल एक दे नाल ही है, हरी परमेश्वर। क्योंकि मेरा प्रेम रच मिच गया, मैं उहदे विच रत्ती गई हाँ, रंगी गई हाँ। ते सानू मनमुखां दा संग नहीं चाहीदा, सानू दुहागणां दा संग नहीं चाहीदा। अरदास करके सुहागणां दा गुरमुखां दा संग मंगिया करो। जिहड़े बाहरों चोले बदलदे आ ना, इहनां दा संग नहीं चाहीदा। जिहड़े अंदरों रंगे होए आ उहनां दा संग चाहीदा। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिन्ना कै पास, धूड़ तिन्ना की जे मिले जी, कहो नानक की अरदास। साहिब गुरु अमरदास महाराज।

जिस जीव इस्त्री ने हरी दे नाम दा रस चख लिया अमृत रस शब्द सुभाखे आ जिन्हें शब्द दे राही उदे गुण बयान किते भाख्या मतलब बोलना सुभाख्या चंगे गुण जिन्हें उस दे नाम दे रस नू चख के शब्दां दे राही अपने शब्दां राही नहीं क्योंकि अब साढ़े कोल ते शब्द ही नहीं होने उस वेले जिन्हें चाखी सोई जाने गूंगे की मठे उत्थे ते गूंगे की गल हो जानी है साढ़े कोल ते शब्द रहने ही नहीं फिर असी उदे गुण किवें प्रगट करांगे शब्द दे राही गुरबाणी दे राही उत्थे साढ़े शब्द खत्म हो जाएंगे जे भगत 15 भगत साहबान बैठे हुए है ना उन्हां दे अपने शब्द खत्म हो गए सी वो अंदरों जदों रस चखिया ते वो परमेश्वर दे जिहड़े बोल सी वो प्रगट होए ते अज गुरु ग्रंथ साहिब च बैठे ने भाई सत्ता ते बलवंड दे हंकार दे बोल सी ना महाराज ने कहा तुसीं फिटकारे गए हुण ना गुरु घर तुहानूं किसे ने प्रवान करना है ना गुरु की संगतां ने प्रवान करना है फिटकारे गए पर जदों अंदरों मैं निकल गई अहंकार निकल गया चरना च आके ढह पए फिर अंदरों दी बोल नहीं निकले ते फिर भाई सत्ता ते बलवंड जी अंदरों जदों धुरों निकले हुए बोल निकले अज गुरु ग्रंथ साहिब च बैठे ने भाई सत्ता ते बलवंड जी जिन्हां दी आपां वार पढ़दे हां एक दिन गुरु घर तो फिटकारिया ते एक दिन गुरु ग्रंथ साहिब च ही बिठा लिया क्योंकि उन्होंने अपने बोल खत्म हो गए वो अपने बोल हुण बोलते नहीं। इस तरह महाराज जी कहिंदे ने कि जदों ये रस चख लिया चखण तो बाद फिर गुरु दे शब्द राही उहदे गुण प्रगट किते जांदे हन हर सर रही भरपूरे ते वह जीव इस्त्री हरी दे सरोवर नाम सरोवर विच हर वेले चुब्बियां ही लाउंदी रहिंदी है वो जीव इस्त्री फिर होर थां ते

अमरदास महाराज कहिंदे कामण इस्त्री सा पिर भावे उस प्यारे नूं भा जांदी है, शब्दे रहे हदूरे, शब्द नाल जिहड़ी जीव इस्त्री जुड़ गई उहनूं हर वेले उहदा अहसास हुंदा है, वह कदे अपने आप नूं इकल्लिया महसूस नहीं करदी, उहनूं हुंदा वी मेरा पिर, मेरा पति, मेरा प्यारा परमेश्वर हर थां ते मेरे नाल है। ते जे ओह हर थां ते मेरे नाल है, मैनू डोलण दी घबराउण दी की लोड़ है, जां तू मेरे वल है तां क्या मोह छंदा, तुद सब कुछ मैनूं सौंपिया जां तेरा बंदा, ओह फिर घबराउंदा नहीं। पर शब्द राही असीं शुभ शोभावंती होना है, शुभ गुणा वाली बनना है, सुचज्जी बनना है, तां उस प्यारे दा सानूं अहसास हो सकदा है, असी उहदे नाल जुड़ के ये आत्मक जोत परम जोत विच लीन करके अपना जन्म सफलियां कर सकते हैं। अरदास करो, जे तां आ शब्द ते जीवन ढुकदा है ये तां मुबारक है तुहानूं, जे नहीं ढुकदा ते अरदास करो। कर्महीन धन करे बेनंती, कद नानक आवै वारी, सब सुहागण माणे रलियां, इक देवो रात मुरारी। कद ना

आवे। नाम जिनके मन वसे आवाजे सब दुख नेरे, कह नानक सचे साहिब क्या नाही करते रे। साचा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन वस

हारुं वाजे वंश कर सुपागे कर सुपागे शब्दो वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत वास कीते काल कंटक मारे आ तुरु करम पाया तुर जिनको से नाम हर कह लागे कह नानक तय सुख हो आदित करन हद वाजे आनंद सुनो वट पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार वरम प्रपाया उतरे सगल सोरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बानी संत साजन पे सर से पूरे गुरु ते जानी सुनते पुनीत कहते पुरित सतगुर है आप।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दशमी प्रथम भगवती।

हर सिमरत अनद अनंता रंग तमसा पूर्ण आसा कव है न व्याप चिंता सो कहो टल गुर सेविय अहनस सहज सुपाए दर्शन बरसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत कसम दी नूरे अरसो गुरसो चटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म की कटी है।

सगल सामग्री तुम्हारे तुम ते हो सो तुम्हारी गत में तम नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दशमी प्रथम भगवती

हमे अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत चाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸੱਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠੱਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਬੇਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਹਾ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨੋ ਦੈਨੋ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋਂ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹੇ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜੈਨੋ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀ ਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤੁਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤ ਮਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪ੍ਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈਂ ਕੌਂਸਾਂ
तिस पाछे बचरे छरया तिन कवन घलावे कवन चुगावे मन में ही सिमरन क्रिया सब निधान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परावरिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परावरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्या वही तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर दया बहो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक को पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्या वही हर त्या वही तुद जी से जाने जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैनो हर त्याया जी तेन टूटी जमकी फांसी जिन नरपौ जिन हर नरपौ ते आया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तपतापहीं जपहीं बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खटक्रम करंता से भगत बरे जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुदे आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करहें सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया
जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आ मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ मिन दूजा कोई नाही, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल बिछड़िया संयोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद मिन दूजा अवर ना कोई, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़े भैरे निवासा, पाणी पावक तिन्ह किया, पंकजो मोह पग नहीं चले, हम देखा तह डूबियले, मान एक न चेतस मूड मना, हर विसर तेरे गुण गलया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवंत नानक तिनकी शरणा, जैनो तू नाही विसरया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मेल साध संगत भाज केवल नाम, श्रंग जाम लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जान्या हर राया, कहु नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जान्या हर राया, कहु नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चाव पाई, अमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सवै तुम काबो हो, आप हाथ दें महे बचावो हो, सुखी बसें मोरो परवारा, सेवक सिख सवै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबै रन को आय संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अबर ना त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखा मारे तारी हे, चुन चुन शतर हमारे मारी हे, आभा दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करी हो रक्षा, राख लियो मोहे रखण हारे, साहिब संसहाए प्यारे,
दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दसकंता, काल पाए ब्रह्मा बपथरा, काल पाए शिवजो अवतरा, काल पाए कर भिषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जौन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो, जौन काल सालोक सवारा, नमस्कार हैं तहें हमारा, जौन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो, आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, सिवकन को सेव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो, कटकड़ के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, घड़ घड़ की पढ़ पढ़ की जन्ने, जाओद करक करा कर तारा, प्रजा तरत तव देह अपारा, जवे आ करक कर तुहू कब हूं, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूं, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आवा अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहित नरालम, जानत बेद बेद अर आलम, रंकार निर्विकार निरलंब, आद अनीन अनाद असंभ, ताका मोड़े उचारत पिता, जाको पेव नबावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदाशिव, रंकार का चीनत नह पिव, आप अपनी बुद है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनुपस रूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा, अंड जे रसे तज कीनी, उत्पज खान बहर रच दीनी, कहो फूल राजा हवे बैठा, कहो सिमट बयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्ट दखाए अचंभव, आजुगा स्रू स्यम भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख वार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण गाता, जे आस्तु तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तुहाए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताही सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला, कृपा दृष्ट तन जहे न हरेओ, ताकी ताप तन कमाए हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फांसती
ताहीं ओबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओबारी सर उठो मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओबारी सर उठो मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुभेद कहें हम एक ना जान्यो सिरियस मां कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो ही बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड के गए हो तोहारो द्वार मही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार सगल द्वार कौ छाड के गए हो तोहारो द्वार मही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा रामकली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तंगावो हरी केरा मान जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दूख सब मसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला सुमृत स्वामी सो क्यों मनो मसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस दे है सो पावे सदा सिफत सलाहा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा सचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन है बसया जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दियां एह बड़ियाइयां कह नानक सुनो संत हो शब्द तरो पे आरो सच्चा नाम मेरा आधारो
ਵਾਜੇ ਪੰਸ਼ਵ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੋ ਤੁਦ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅੰਨ ਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣਹੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣ ਤੇ ਬੁਣੀ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿ

मंदामणि महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारो जे को खावे जे को पंचाय तिसका हुए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग त्रिय सब नानक ब्रह्म पसारो। स्लो महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेहरा मत होई।

हर रस साध न जानिया तिन अंतर हमे कंडा है। ज्यों ज्यों चले चुबै दुख पावे जमकाल सह है सर डंडा है। हर जन हर हर नाम सुमाने दुख जन्म मरण पव खंडा है। अब नासी पुरख पाया।

पूर्वी महला पंजवा। करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हरलाहा आगे बसन सोहेला। औद कटै दिन सरै नारे मन गुर मिल काल सवारे रहाओ। हे संसार विकार सन से मैं

साद साद सिदादिक मुन जन गावे अचल छला गावे गुन तोम अटल मंडल वे भगत पाए रस जाने ओ कब कल सुजस

तरियंग हस्त कमल माथे पर तरियंग अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के

फल लईं बंदे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कईं परतख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखन परनं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनं जे अमृत।

गुरु दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतित जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर।

जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फुर मावे शोक हो, गुर अमरदास कारण करण।